0: थोक रही ना थोक कहूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: Junior.
1: Extreme energy drink.
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: शुभ कहूँ प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: Regel hat in Jetschka Megahertz.
1: ये कुमार जी हजुर का मुखार बिंदु बाटर धेरै कुरा सुन्ने अवसर पर प्रभु तेज पछी का कुरा के भाई संहार करता श्री महादेव को हालत कस्तो भयो सती देवी ले कस्ता गर्भमा बास ले श्री महादेव र पार्वती को विवाह कसरी भयो आदि कुरा जान्न निकै उत्सुक छु प्रभु आज्ञा हो